0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी

0: सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस के मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर

0: भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 8:41 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर कार्यक्रम मस्त मुंबई। गुड मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो गीत संगीत के दीवानों, सैटरडे का दिन और 23 मई 2026 यानी सैटरडे का दिन है, तो बहुत सारे लोगों को पूरी तरह से छुट्टी है और कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी छुट्टी है, लेकिन आरजे को कभी भी छुट्टी नहीं होती क्योंकि हमारा रेडियो तो 24 घंटे चलता है आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं और आपके साथ हम चलना चाहते हैं, बस चलते रहेंगे रफ़ी साहब की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, बेखुदी में कदम उठ गए जो सनम आ गए पास हम। लेकिन आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके कदम उठे और ऐसे उठे कि बस चलते चलते ना जाने कहाँ पहुँच गए। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, अपना आपका अपना चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और एक ऐसी महिला के बारे में आज स्लॉट में हम बात करेंगे जिनकी पर्सनैलिटी में जिंदा दिली है, जैसे मैं अपने नाम के साथ लगाता

जिंदा दिल आरजे, लेकिन ये तो हमसे यानी एक कॉमन मैन से मीलों आगे हैं, बहुत आगे हैं। पूरी तरह से इनका जो जीने का अंदाज रहा है उसमें जिंदा दिली रही है, और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप समझ गए हैं कि मैं किस हस्ती की बात कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं इनका नाम, ये कौन है, जल्दी कीजिए। जिनके जवाब सही होंगे उनके नाम मैं ऑन एयर लूँगा। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम है हलाकू।

जी हाँ दोस्तों, 9:10 और 11 सेकंड और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो और कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो मुंबई मेरी जान, मैंने कहा था आज मैं एक ऐसी जिंदा दिल महिला के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए एक बहुत ही कमाल की योजना बनाई और इस योजना को नाम दिया गया एवरेस्ट 1984। इस मिशन के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम में थी 6 भारतीय महिलाएं और 11 पुरुष, यानी टोटल हो गए 17 लोग, 6 महिलाएं, 11 पुरुष, और 17 लोगों को माउंट एवरेस्ट की इस पीक को, इस शिखर को फतेह करना था, यानी वहां पर जाकर तिरंगा झंडा फहराना था। और ये टीम भारत से पहुंची नेपाल के शहर काठमांडू, और काठमांडू से इन्होंने अपनी माउंट एवरेस्ट की यात्रा को शुरू कर दिया। और चलते चलते ये लोग पहुंच गए 24,000 फीट की ऊंचाई पर। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की और पहुंचे 24,000 फीट की ऊंचाई पर। और 15 मई 1984 की रात थी और उसके बाद क्या हुआ बात करेंगे अगले लिंक में। तो बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

जी हाँ दोस्तों, लग जा गले दिल रुबा, बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा है। एनीवे, 9:21 और कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। तो हमारी कहानी पहुंची थी कि 15 मई 1984 की रात थी, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये टीम 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई, और वहां पर एक जगह उन्होंने तंबू लगाया और पूरी टीम रात को उस तंबू में सो रही थी। लगभग 12:30 बजे के आसपास एक बहुत तेज़ तूफान आया और तंबू में सोई हुई पूरी की पूरी टीम बर्फ के पहाड़ के नीचे दफन हो गई, यानी बहुत सारी बर्फ उनके ऊपर गिर गई, और इस वजह से टीम के बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोगों का जो हौसला वो टूट गया, इंजर्ड हो गए। और टीम के ज़्यादातर लोगों ने फैसला किया कि अब वो आगे नहीं जाएंगे, यानी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का जो आइडिया था, जो प्लानिंग थी, उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। सिर्फ टीम के गिनती के लोग रह गए जिन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, हम अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे। तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उन्होंने जो नाम दिया कि आज मैं किस महान, किस बड़ी हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके जवाब एकदम सही हैं। और इनके नाम हैं महेश बोरा, अजमेर राजस्थान से, अंकित, अंकित ने जगह का नाम नहीं लिखा है, प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे मानखुर्द से, फिरोज सिंगनपुरिया जी ग्रांट रोड से, पंकज मोहोड़ अमरावती से, अंधेरी से तनुजा शर्मा, और अजमेर से लालीजा। जी हाँ, आप सभी का जवाब एकदम सही है। इस हस्ती का नाम है, इस साहसी महिला का नाम है बछेंद्री पाल। आज ही के दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और वहाँ पर अपना विजय का झंडा, यानी तिरंगा झंडा फहराया था। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, ये पर्दा हटा दो। जी हाँ, हम हैं प्यार करने वाले।

जी हाँ दोस्तों, ये पर्दा हटा दो। और ऐसे पर्दे अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते, हमें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एनीवे, आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम। और बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आज हम ऑल टाइम ग्रेट पर्सनैलिटी बछेंद्री पाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी टीम के ज़्यादातर लोगों ने गिव अप कर दिया, लेकिन बछेंद्री पाल सिर्फ मात्र एक महिला बची, यानी 6 में से 5 महिलाओं ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन बछेंद्री पाल के हौसले बुलंद थे और उनके साथ टीम के कुछ पुरुष सदस्य भी थे, तो इन लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी यात्रा को, अपने मिशन को पूरा करेंगे। 22 मई 1984 को ये यात्रा फिर से शुरू की गई और इस यात्रा में कुछ नए और अनुभवी पर्वतारोही भी शामिल किए गए। और ये टीम लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई और जगह का नाम था साउथ कोल, यानी माउंट एवरेस्ट की यात्रा चल रही थी। और पूरी टीम एक रात के लिए यहां पर फिर से रुकी और 23 मई 1984 की सुबह इन्होंने फिर से चढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल थी कि दोस्तों आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी सीधी बर्फ़ की दीवारें खड़ी थी, जैसे हम कहते हैं ना कि

दीवार है और इस दीवार पर चढ़ना है। तो हमारी ये टीम बर्फ की खड़ी दीवार पर चढ़ाई कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। तो फिलहाल एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ दोस्तों, 9:38 और 38 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम के सामने थी अब बर्फ की खड़ी दीवारें, और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तापमान आप सोच भी नहीं सकते कितना होगा, -35 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 35 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में तो हम इतनी सर्दी के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन टीम के हौसले बुलंद थे। 23 मई 1984 का दिन था, यानी आज ही का दिन था, 23 मई 1984। दोपहर के ठीक 1:07 पर टीम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई, और इस तरह बिशेंद्री पाल जी इस शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो कितने बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि बिशेंद्री पाल ने वहां पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया, और इस तरह ये यात्रा मुकम्मल हुई। और बिशेंद्री पाल जी ने आज के दिन इस यात्रा को पूरा किया था, और ख़ास बात यह है कि कल है 24 मई और कल है उनका हैप्पी बर्थडे, यानी कल वो पूरे 72 साल की हो जाएंगी। तो बिशेंद्री पाल जी, हम आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि कल मैं तो नहीं रहूँगा और हमारे कोई दूसरे साथी आरजे होंगे, और 23 मई को आपने इस विक्ट्री को हासिल किया और 24 मई को आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा इस जीत के बाद, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरे दिल से पूरी मोहब्बत से तारीफ करना चाहता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, 9:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और बात कर रहे हैं हम एक खास हस्ती बछेंद्री पाल जी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि आज ही के दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, जो शिखर है, उस पर अपने कदम रखे थे और तिरंगा झंडा फहराया था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे मिशन पूरे किए और मशहूर पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें बिछेंद्री पाल जी ने ही ट्रेनिंग दी थी और उनके हौसले को बढ़ाया था। भारत सरकार ने मिस पॉल को पद्मश्री, पद्मभूषण और अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। साथ ही साथ उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को देखकर पहली बार, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार देखा था तो क्या कहा था दोस्तों। उनके अल्फाज थे कि हम पहाड़ी लोग हमेशा से पहाड़ों की पूजा करते आए हैं और आज इस पहाड़ को देखकर मेरे अंदर, मेरे दिल में भक्ति का भाव पैदा हो रहा है। मुझे लगता है शायद इसी भाव की वजह से इस मिशन को पूरा करना उनके लिए संभव हो पाया होगा, क्योंकि जहाँ पर डिवोशन आ जाती है, भक्ति आ जाती है, वहाँ पर बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। एनीवे, अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो डोलाइडस के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान ये बात कही। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में की गई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस। वेलकम बैक मुंबई। 10:50 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और आज हमारा टाइटल है सुनो सुनो ए दुनिया वालों, यानी रविंद्र अपने दिल की बात आपको सुनाने वाला है, गौर से सुनिएगा। और बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल पहला गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की।

जी हाँ दोस्तों, 10:16 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका आरजे रविंद्र चौहान। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी से करूँगा और ये कहानी हम सभी जानते हैं और हमने बचपन में भी सुनी है, लेकिन शायद इसका जो मतलब है, जो मायने हैं, वो खो गया है। सभी जानते हैं कि एक जानवर है खरगोश और एक है कछुआ। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, बल्कि बहुत तेज़ी के साथ जंप करके छलांगे मार कर दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत ही धीमी चाल से चलता है। और इस वजह से, जैसा कि एक कहानी हमने बचपन में सुनी है कि खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाया करता था कि तेरी क्या चाल है, मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मैं कितना तेज़ी के साथ दौड़ सकता हूँ और तू कितना धीमे धीमे चलता है। और इस तरह से खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कछुए का भी दिमाग, कहते हैं ना कि मुंबईया भाषा में कहते हैं कि दिमाग जगह से हट गया, दिमाग का दही हो गया, तो कछुए का भी दिमाग का दही हो गया और कछुए ने खरगोश को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। वैसे तो कछुए को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि कछुआ बहुत धीमा चलता है, लेकिन फिर भी बस मन में आ गया तो चैलेंज दे दिया कि चल भाई खरगोश भाई, आज तेरे मेरे बीच में एक दौड़ हो जाए, एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश कछुए का चैलेंज सुनकर हंसने लगा, उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी और सोचने लगा कि भाई लगता है कछुए के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आज उसके माइंड में कुछ डिस्टरबेंस हो गई है और उसने मुझे पता नहीं क्यों चैलेंज दे दिया कि आज तुम्हारे और मेरे बीच में दौड़ हो जाए, मुकाबला हो जाए। खरगोश ने कहा, हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, जीतना तो मुझे ही है ना। बस एक विनिंग पॉइंट फिक्स किया गया और खरगोश और कछुए में दौड़ शुरू हो गई। ये कहानी आपने भी बहुत बार सुनी है, हम सभी ने सुनी है और इसका एंड क्या है कि खरगोश रास्ते में सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है अपनी रफ्तार से। जी हाँ, अपनी रफ्तार से, अपनी स्पीड से, बिना रुके बिना थके धीरे धीरे चलता रहता है और विनिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और खरगोश वहीं पर सोया रह जाता है, यानी कछुआ जीत जाता है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है कछुआ। तो इसी के बारे में बात होगी और अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए कह सकते हैं। अगला गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ दोस्तों, 10:37 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। जैसा कि मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, और ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत ही हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसमें रची बसी है, और हम सभी ने बचपन में इस कहानी को सुना है, पढ़ा है और सुनाया भी है। लेकिन आज दोस्तों शायद हम इसका मतलब भूल गए हैं। यहाँ खरगोश चंचल स्वभाव, घमंड, गलत तरह के उत्साह और जोश का प्रतीक है, जबकि कछुआ है मानसिक ठहराव, अनुशासन और अपने मकसद के लिए एक खास तरह के कमिटमेंट का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत किसके हिस्से में आती है, और हमारी आज की नई पीढ़ी को खास तौर से इस कहानी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी में अक्सर शायद हम लोगों ने भी ऐसी गलती की होगी कि बहुत बार हमने खुद को खरगोश समझा होगा और दूसरों को कछुआ। ज़रा सोचिए, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा किया कि खुद को खरगोश मान लिया और सामने वाले को कछुआ? अरे ये मेरे सामने क्या है, ये मेरे सामने क्या कर पाएगा, इसको तो मैं अपने रास्ते से बस यूं ही हटा दूंगा। ऐसा शायद हमने भी बहुत बार सोचा होगा, लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद हमें एहसास हुआ होगा कि हम कितने गलत थे। जिसे हमने कछुआ समझा वो किस तरह चला और कहां से कहां पहुंच गया, शायद हमसे भी आगे निकल गया। एनीवे, अगला गीत लता जी की आवाज़, बहुत ही प्यारा गीत, सुनिएगा और महसूस कीजिएगा।

जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, बात कर रहे थे खरगोश और कछुए की इस बहुत ही पुरानी और मस्ती भरी कहानी की। हमारी आज की युवा पीढ़ी सब कुछ दोस्तों जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहती है। वो अक्सर हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी के इस मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये शब्द इस कहानी के हीरो कछुए के लिए पूरी तरह से सही हैं। उसने खरगोश की तेज़ गति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, ना ही वो डरा ना ही वो घबराया, और उसने उसे चैलेंज भी दे दिया। लेकिन अपनी गति अपने अनुशासन के साथ वो अपना काम करता रहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ खरगोश की हार और कछुए की जीत का सवाल ही नहीं है दोस्तों, ये मुद्दा ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने मकसद के लिए कमिटमेंट रखना, जो कछुए के अंदर था लेकिन खरगोश में नहीं था। कुछ ऐसा ही प्यारा सा मैसेज भेजा है मानखुर्द से प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे जी ने। थैंक्स अ लॉट। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता जी की आवाज़। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, लेकिन हम आपके लिए खाते हैं आज चौथी कसम कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।

हे मुंबई सिटी, 10:54 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो बात कर रहे थे आज हम खरगोश और कछुए की। इसमें कोई शक नहीं, अगर खरगोश और कछुए की तुलना में कभी भी कोई बात होगी तो लोग यही कहेंगे कि खरगोश कछुए से बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। यहाँ पर स्पीड का मसला है ही नहीं, तेज़ गति का मसला है ही नहीं, मसला सिर्फ इतना ही है कि अपने मकसद पर फोकस रखना और दूसरी किसी बात पर ध्यान न देना। और आज की युवा पीढ़ी अक्सर कहती है कि हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट वर्क के लिए कुछ खूबियां खरगोश की लेनी होंगी और कुछ बेसिक गुण कछुए के चाहिए, क्योंकि कछुए के अंदर ज़्यादा ठहराव है, ज़्यादा मैच्योरिटी है। अब आप सोचेंगे कि रविन, आज आपने हमें खरगोश और कछुए की कहानी क्यों सुनाई? दोस्तों, आज का दिन है 23 मई और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जा रहा है। हिंदी में कह सकते हैं विश्व कछुआ दिवस। अब आप कहेंगे कि कछुआ दिवस मनाने की भी भला क्या ज़रूरत है? भाई ज़रूरत है ना, कछुए में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, स्थिरता, मैच्योरिटी, लंबी उम्र, अनुशासन, संयम, ये सारी बातें आज की पीढ़ी को, खास तौर से आज के इंसान को कछुए से सीखना चाहिए। शांति और चैन से जीना, अपनी दुनिया, अपना रंग, अपना ढंग, कोई क्या करे कुछ लेना देना नहीं। चाहे कितने भी खरगोश आसपास हों, आप अपने अंदर के कछुए को जिंदा रखें और उसी के साथ जीना सीखें, इसी का नाम जीना है। आखिरी गीत लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत। सो इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन का सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस

चोकलिंगम ने कल मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 20 जून से 7 अक्टूबर के बीच 1,00,000 से अधिक फील्ड लेवल अधिकारी 9,80,00,000 मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 पर भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। नेपाल पर्यटन विभाग ने बताया कि ये पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। समाचार के अंत में, स्पेस एक्स ने आज सुबह सबसे बड़े और शक्तिशाली स्टारशिप सुपर हेवी रॉकेट सिस्टम का प्रक्षेपण किया। ये चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान विकसित करने के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, इस समय ठीक 11:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। मैं हूँ आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ, और हमारे साथ है नई आवाज, नई पहचान, आरजे। जी हाँ, बताइए नाम आपका।
1: हाय किरण माला, मेरा नाम है आरजे उर्वशी और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आज मैं और उर्वशी आपके साथ रहेंगे 2 बजे तक। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी समय ठीक 11:10 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर और मेरे साथ है उर्वशी। जी हाँ, जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है जब इंसान को ये लगने लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे करने की काबिलियत मेरे अंदर है ही नहीं, और इंसान हार मानने लगता है।

0: है। उर्वशी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गई हो?
1: हाँ, कभी कभी जब स्कूल में थे और थोड़े कम मार्क्स भी आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है, हम बिल्कुल बेवकूफ हैं। लेकिन अब पता चलता है कि उस समय जब इतना पैनिक हो जाते थे उसकी कोई जरूरत नहीं थी।
0: जी हाँ, बहुत सही कहा, ऐसा होता है अक्सर, आपने जो भी कहा। लेकिन फिलहाल मैं तो यहाँ पर सुनना चाहती हूँ ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। बोलो क्या बोलती हो, सुने ये गाना?
1: जी
0: बहुत ही अच्छा है।

0: जी समय ठीक 11:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। मैं हूँ RJ किरण माला, समय आपके साथ और हमारे साथ है नई आवाज नई पहचान उर्वशी। तो उर्वशी, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं।
1: जी हाँ,
0: कुछ काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और कुछ काम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं होते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तब हमें एक शब्द याद आता है, किस्मत। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? और हमारे लिसनर्स भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी उर्वशी कि आप किस्मत के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
1: किरण वाला, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि किस्मत है ना कि मैं आज आपके साथ ये शो कर रही हूँ।
0: क्या बात है।
1: जब मैं नई नई मुंबई शिफ्ट हुई थी और जब हम यहाँ आते हैं सपनों के शहर में, तो सब अपना छोटा सा एक आशियान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये रेनबो के जरिए मुझे अपनी आवाज़ लाखों मुंबई वासियों तक पहुँचाने का जो मौका मिला है, वो भी एक किस्मत ही है ना।
0: नहीं, सही कहा। वैसे तो कहते हैं ना भी, मुंबई सपनों का शहर है, जो कि लोग यहाँ पे आते हैं, सपने देखते हैं। किस्मत भी यहाँ पे लागू होता है कि भाई किसके सपने पूरे हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। वैसे आपके सपने तो शायद पूरे हो गए हैं आज इस समय। हम व्हाट्सएप के जरिए हम अपने लिसनर्स को भी पूछ लेते हैं भाई किस्मत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। लेकिन उर्वशी, आप कह दीजिए एक बार इन्हें भी कि भाई थोड़े शब्दों में कहे।
1: जी हाँ, आप अपनी बातों को कम शब्दों में लिखें ताकि हम ज्यादा लोगों के मैसेजेस पढ़ सकें।
0: जी हाँ, तो चलिए किस्मत की बात करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: जी समय ठीक 11:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर।
1: कभी कभी जिंदगी ना पूरी तरह हमारे साथ चलती है, लेकिन कभी कभी हमारा साथ भी नहीं देती। शायद यही वो समय होता है जब हमें कुछ नया सीखना होता है या कुछ नए अनुभव मिलते हैं। वैसे अक्सर हम सभी लोग ऐसे समय से बचकर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसका सामना करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ना किरण?
0: और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ भी नया करना आसान नहीं होता है, लेकिन जिंदगी चाहती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि तभी तो जिंदगी में कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। कुछ नया बनाने के लिए पुरानी दीवारों को तोड़ना ही पड़ता है। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ उर्वशी की, क्या सुबह आप आते समय आपको बारिश जैसा लगा मौसम या कुछ?
1: नहीं, बारिश तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, कुछ बादल थे, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमिड ही एटमॉस्फेयर है। अब हम सभी यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी बारिश आ जाए और गर्मी से हमें छुटकारा मिल जाए।
0: नहीं, सही कहा। जब मैं भी आ रही थी आज ट्रेन से, तो मुझे भी ऐसे लगा कि अब बस थोड़ी देर में बरसात होगी। मरीन लाइन्स आया, चन्नी रोड आया, सारे स्टेशन में मैं बाहर देख रही हूँ खिड़की के कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। स्टेशन पीछे जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन बारिश तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। एट लास्ट चर्च गेट आ गया, मैं उतर गई और मैं ऑफिस आ गई, लेकिन बारिश मुझे नहीं मिली।
1: बस हम दोनों यही दुआ करें कि बस जल्दी से मुंबई की वो फेमस बारिश हमको दिखाई दे।
0: तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। आशा भोसले की आवाज में है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और करते हैं तो आन बान शान से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी कुछ ही समय में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्टम्प्ड हमारे दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ। और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जय समय ठीक 11:47 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक। और साथ ही हमारे साथ हैं,
1: हाय मैं हूँ उर्वशी।
0: तो उर्वशी जी, मैं यहाँ पर आपको कुछ कहूंगी तो आप जरा ध्यान से सुनिए।
1: जी जी,
0: वैसे आप ही कह दीजिए।
1: सो जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हमको कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने की बात आती है तो सबसे पहला सामना करना पड़ता है अपने अंदर के डर का। कहने वाले तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन किरण माला ये एक एग्जांपल आप दे दीजिए।
0: अच्छा ठीक है, शोले फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी।
1: जी हाँ।
0: आपने क्या, हमारे बहुत सारे श्रोता है सभी ने देखी होगी, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी कि अगर जिसने नहीं देखा भाई हम क्या ही कहें उन्हें।
1: जी।
0: तो शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने भी कहा था, जो डर गया सो मर गया, यानी डरना मना है। अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ करना है तो हमें गब्बर सिंह का डायलॉग हमेशा याद रखना पड़ेगा,
1: जो डर गया सो मर गया।
0: जी हाँ, ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी है। तो मैं जल्दी से मैं आपको एक बातें बता ही दूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, ये अंजू अंधेरी ईस्ट से, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है मेडिकल, वो लिखती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नया कुछ करने को स्टार्टिंग में, यानी कुछ इंग्लिश और हिंदी जो होता है ना वैसे मिक्स है, तो मैं आपको छोटे शब्दों में यानी छोटे वाक्य में बता देती हूँ कि वो कहती हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो अभी आपने कहा ना कि निकलना बहुत ज़रूरी है और सामना करना पड़ता है, वही बातें उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि उन्हीं को सफलता मिलती है जो कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। बहुत सही कहा है। ऐसे ही और भी श्रोता है जिन्होंने कहा है, लेकिन हम लेंगे इस गाने के बाद। लेकिन गाने से पहले यहाँ पर एक स्पॉट में प्ले कर देती हूँ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

तो जैसा कि अभी हमने कहा कि जो डर गया वो मर गया, तो उसी पर एक गाना है उर्वशी, फिल्म का नाम तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन इस गाने को गाया है अलका याग्निक और अमित कुमार ने, बहुत ही अच्छा गाना है। इस गाने में गब्बर जैसा नाम आपको सुनाई देगा, तो फिल्म का नाम क्या है हमारे श्रोता तो जानते ही हैं, लेकिन उर्वशी मैं आपको बता देती हूँ, 100 डेज फिल्म का नाम है और माधुरी दीक्षित पर ये फिल्माया गया गाना, बहुत खूबसूरत है। तो चले एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। एफएम रेनबो
1: और 12 बजे हैं, प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। देश भर के 47 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। नए दर आज से ही लागू हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे, साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। नवी मुंबई के पाम बीच मार्ग पर एक एसयूवी के यातायात अवरोधक से टकराने के बाद उससे 70 लाख रुपए मूल्य की अफीम और एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने ये जानकारी आज दी है।

0: जी इस समय ठीक 12:01 हुए हैं, यानी 1 मिनट नहीं बाबा 2 मिनट हुए हैं, 12:02 जो इस समय हमारे कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का होता है। और मैं हूँ आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमारे साथ है उर्वशी,
1: सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
0: तो उर्वशी हमारा साथ है ठीक 2 बजे तक।
1: यस yes.
0: तो आज हम इस कार्यक्रम में संगीतकार आरडी बर्मन के बारे में बात करेंगे उर्वशी।
1: जी हाँ, और वो मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन के बेटे थे और उन्हें पंचम दा भी कहा जाता था किरण।
0: तो इस कार्यक्रम में आप संगीतकार आरडी बर्मन के किसी भी गाने के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कार्यक्रम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका नाम हम लेकर गाना प्ले करेंगे और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा 1 बजे के कार्यक्रम हिट एंड हॉट में भी।
1: लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से, क्योंकि पंचमदा जाने जाते थे अपने फास्ट पेस गानों के लिए, तो आज कुछ ऐसा ही मूड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सभी कुछ फास्ट बीट वाले गाने ही रिक्वेस्ट करें।
0: जी हाँ, जरूर जरूर सुन लीजिए भाई, सभी लोग उर्वशी जी ने कहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जैसा कि फास्ट गाने के साथ।

0: जी हाँ, समय ठीक 12:09 हुए हैं और कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत हो गई है। जैसा कि अभी उर्वशी ने थोड़ी देर पहले कहा कि फास्ट गानों की फरमाइश करें आरडी बर्मन साहब के। जब आरडी बर्मन साहब का जन्म हुआ तो उस समय के मेगा स्टार अशोक कुमार उन्हें देखने के लिए उनके घर आए तो राहुल बहुत ही ऊंचे स्वर में रोने लगे थे। तब दादा मुनि अशोक कुमार ने कहा कि ये बच्चा तो पांचवें सुर में रोता है, इसलिए कभी सुना है आपने ऐसा भी पांचवा सुर?
1: ठीक है, कभी नहीं सुना,
0: इसलिए इसका नाम पंचम होना चाहिए। बाद में जब वो संगीतकार बने तो पंचम दा के नाम से भी जाने गए। तो ये है उनके नाम की कहानी। देखिए कितना ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा रो रहा है और ऊंचे स्वर में रोया तो उसका नाम ही पड़ गया पंचम दा।
1: और जिस लीजेंड ने उनका नाम रखा था उस हिसाब से उनका लीजेंड बनना भी तय ही था ना।
0: बहुत खूब, तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। इस समय ठीक 12:16 हुए हैं। तो आरडी बर्मन साहब जब 17 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला गाना तैयार कर लिया था। गाने के बोल थे, ए मेरी टोपी पलट गया।
1: लेकिन इस गाने का ना किरण माला कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में उनके पिता एसडी बर्मन साहब ने इस गाने की धुन का इस्तेमाल फिल्म टशन में किया था। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो पर आरडी बर्मन साहब के बारे में। और आपको भी अगर उनके बारे में हमें कुछ कहना है, बताना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं
0: और साथ ही गाने भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अब से लेकर ठीक 1 बजे तक, यानी 2 बजे तक आप अपने

0: पसंद के गाने सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक टास्क है, आर डी बर्मन साहब के ही गाने हो और वो भी
1: फास्ट।
0: जी हाँ, फास्ट हो। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, पिया तू अब तो आजा।
1: और ये रिक्वेस्ट आई है वाडवड ढिगरे पाड़ा से, अविनाश दामोदर कड़ू ने इस गाने की फरमाइश की है, तो आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: जी हाँ।

बॉडी का।

0: जी हाँ, समय ठीक 12:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचमदा धुन बनाते समय नई नई तरह की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। इसके लिए वो तरह तरह के प्रयोग भी किया करते थे। उर्वशी,
1: जी हाँ, शोले फिल्म में एक गाना था, आप जानते ही होंगे, महबूबा महबूबा। इस गाने के लिए आर डी बर्मन साहब ने गाना तो गाया ही था, लेकिन संगीत भी उन्हीं का था। और इस गाने की धुन बनाते समय उन्होंने कांच की खाली बोतलों की आवाज़ों का इस्तेमाल किया था। किरण
0: जी हाँ, बहुत कमाल की बात है। कांच की बोतल से आवाज़ किस तरह से, यानी उस आवाज़ को किस तरह से प्रयोग किया जाए गाने में, कमाल की बात थी उस समय के समय। तो क्यों ना हम इसे फिल्म का ये गाना सुने,
1: क्योंकि दो लोगों की फरमाइश भी आई है।
0: नाम क्या है बताइए जल्दी से।
1: अनीता तेजवान और विजेंद्र घटोल अकोला से, दोनों हमारे लिसनर्स ने महबूबा महबूबा शोले से फरमाइश की थी और हम उनको यही गाना सुनाते हैं।
0: जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं यही गाना।

0: इस समय ठीक 12:28 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। जो गाना अभी हमने प्ले किया ना उर्वशी, वही गाने की और भी रिक्वेस्ट लोगों ने की थी जो अभी हमने देखा। नाम है अनिल शिंदे सोलापुर से और महेश शेट्टी, इन्होंने भी यही गाने की फरमाइश की। तो वैसे तो मैं कहना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया हुआ है उर्वशी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, यानी सभी लोग सुन लेंगे। लिखते हैं प्रणव शिंदे, धड़कनों को धुन में ढालना सिखा दिया, पंचम दा ने हर लफ्ज को गाना बना दिया, आज भी गूंजती है उनके बनाए हर तान, जिन्होंने संगीत को ही अपनी दुनिया बना दिया, पुरानी होकर भी जो कभी बूढ़ी नहीं होती, पंचम दा की धुनें कभी अधूरी नहीं होती, उनकी हर एक लय में बसा है ऐसा जादू जिसके बिना महफिल कभी पूरी नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत लिखा है इन्होंने,
1: बहुत ही खूब,
0: यानी गानों के धुनों को और संगीत जैसे गूंजती है बनाई तान लय सब कुछ एक साथ पिरो दिया है उन्होंने अपने शब्दों में। बहुत खूब प्रणव शिंदे जी। और साथ ही अभी हमारे साथ और भी है श्रोता, जैसे सुरेश वैष्णव जी, वो भी अभी अभी हमें जुड़े हैं या जुड़ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना उर्वशी जो लिखते कुछ नहीं है, बस सुनना पसंद है उन्हें गाने। हाँ,
1: कुछ पैसिव लिसनर्स भी होते हैं ना।
0: हाँ, वो कहते हैं कि भाई हम लिखते नहीं है लेकिन हम सुनते हैं और पूरी तरह से सुनते हैं वो हमारे गाने, हमारे आवाज, हमारे शब्दों
1: बराबर सुनते हैं।
0: हाँ, yes. और उन्हें याद भी रहता है कि भाई कौन सा लिसनर है, कौन है और नहीं कौन सा लिसनर है, तो बात थोड़ी अलग हो गई। जैसे कि अभी कौन से लिसनर से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं या मैं पहले गाना प्ले कर दूं तो वो बता देते हैं भाई ये फला फला जो श्रोता है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। यानी इतने यूज टू है हमारे लिसनर्स। तो हाँ। बहुत मजा आता है कभी कभी देख कर सुन कर के, भाई ये गाने तो बहुत दिल से सुनते ही हैं लेकिन साथ ही अपने लिसनर्स को भी दिल से याद रखते हैं कि भाई इस लिसनर ने ये गाना
1: रिक्वेस्ट किया
0: हुआ है। तो चलो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तो उर्वशी आप बताइए हमें कि इस गाने की किस श्रोता ने फरमाइश की है भाई।
1: जी हाँ किरण वाला, ये गाने की फरमाइश हमको आई है माटुंगा से, हसमुख भाई करके हमारे लिसनर है, उन्होंने की है।
0: जी बढ़िया, तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी हाँ, समय ठीक 12:37 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल, जी हाँ,
1: FM रेनबो
0: 107.1 पर। मैं हूँ आरजे किरण माला और हमारे साथ है नई आवाज, नई पहचान, आरजे उर्वशी। तो उर्वशी, चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने की फरमाइश की है, बताइए भाई।
1: हमारे पास बहुत सारी फरमाइश आई है, पंकज महोड़ जी का गाना बजाएं या फिर राकेश माथुर जी का बजाएं, आप बताइए कौन किसका गाना बजाना है।
0: तो चलिए भाई, हम यही गाना प्ले कर देते हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: तो अभी पंकज मोहड़ जी की पसंद का गाना सुनेंगे और आप सभी, हमारे पास अभी कुछ समय है तो आरडी बर्मन साहब के फास्ट पेस के गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: जी समय ठीक 12:43 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। उर्वशी
1: जी, किरण,
0: मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये गाना तो बहुत स्लो था, लेकिन
1: हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि गाने के बोल बहुत पसंद आ गए और पंकज जी ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की थी तो फिर हमने प्ले कर दिया।
0: जी हाँ, ये बात तो सही कहा कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं ना कि स्लो भी हैं लेकिन उसके बोल, उन गानों के बोल इतने मीठे होते हैं ना कि ऐसा लगता है भाई फास्ट गाने तो हम सुनते ही हैं लेकिन साथ ही क्यों ना एक स्लो गाना भी ले लिया जाए।
1: यस,
0: तो जैसा कि हमने कहा कि भाई सभी के गानों की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं तो इससे ये सिलसिला है ना जो हमारा 2 बजे तक चलेगा, क्योंकि 1 बजे हिट एंड हॉट जो कार्यक्रम होता है ना हमारा, उस कार्यक्रम में ऑलरेडी हम फरमाइश ही लेते हैं, लेकिन आज जो आर डी बर्मन साहब है उनके गाने इतने प्यारे हैं कि मेरा दिल और मेरा मन ऐसा कहा कि भाई आप क्यों ना अभी से सभी की पसंद के गाने प्ले करो।
1: आज लिसनर्स को डबल धमाका हो गया है क्योंकि ज़्यादातर उनके 1 घंटे ही उनकी फरमाइश के गाने बजते हैं, लेकिन आज 2 घंटे उनको अपनी फरमाइश के गाने सुनने का मौका मिला, हम दोनों भी हैं और 2 घंटे का उनको मौका भी मिला, तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत सा जा रहा है।
0: यानी दिवाली पे बोनस हो गया ऐसा कह सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: है कि नहीं।
1: तो अभी हम प्रथमेश जी का ही गाना बजाए, यम्मा यम्मा
0: प्ले करेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद उन्हीं की पसंद का हम गाना प्ले करते हैं, तो जल्दी से सुन लेते हैं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कुछ सेकंड का ही होता है ये
1: तो। और उसके बाद हम सुनेंगे प्रथमेश डोंगरे का फरमाइश किया गया गाना यम्मा यम्मा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो जैसा कि अभी उर्वशी जी ने कहा कि हम ये गाना सुनेंगे, जी हाँ उर्वशी, ये गाना तो हम सुनेंगे यम्मा यम्मा। उसके बाद एक और गाना जो बैक टू बैक हम दे देते हैं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, लेकिन ये गाना तो भाई हीरो फिल्म का था।
2: हम सुनने वाले हैं अशान फिल्म का।
1: हाँ सही कहा,
2: प्यार करते हैं राकेश माथुर जी ने इसकी फरमाइश की है हमें,
1: और प्यार करते भी है ना उर्वशी जी आन बान शान के साथ, जो इस गाने में बहुत सारे बोल आए हुए हैं। लेकिन जल्दी से चलिए बातें कम करते हैं और सुनते हैं ये गाना।

अभी जो आप ये गाना सुनेंगे, ये रिक्वेस्ट किया था कावेरी गणेश ने कोल्हे परिवार पंडरपुर से, तो उनकी फरमाइश पर ये गाना आप सुनेंगे।

0: जी समय ठीक 1:05 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। और इस कार्यक्रम में सुनते हैं अपनी पसंद के गाने, जैसे जैसा कि उर्वशी सारे लिसनर्स तो 12 बजे से ही सुन रहे थे, क्योंकि आज हमने आरडी बर्मन साहब पर प्रोग्राम किया तो उनके इतने सारे गाने थे कि प्ले करते करते ऐसे लगता है कि प्ले लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है।
1: और उन सभी श्रोताओं को भी ये कहना है कि जिन्होंने फरमाइश की थी लेकिन हम बजा नहीं पाए, क्योंकि समय कम रहता है और आपके इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हिट एंड हॉट में आप सभी के पसंद के गाने बजाएं।
0: जी हाँ, अभी हम प्ले करते हैं इस गाने को। इस गाने को पसंद किया है प्रमोद चिंचोलकर जी ने, तो चले सुनते हैं इनकी पसंद का गाना। और ये गाना वाकई उर्वशी मुझे भी बहुत पसंद है।

0: है उर्वशी।
1: जी हाँ, और अभी आप सुन रहे थे अजय साखरे इंदौर की फरमाइश का गाना जब तक है जान फिल्म का गाना सुन रहे थे आप।
0: तो उर्वशी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे और भी लिसनर्स हैं, जैसे कि जिनका नाम है अशोक पाटिल। जी हाँ, ये वर्ली से बहुत रेगुलर लिसनर है जो हमें सुनते हैं, और उन्होंने आज एक फरमाइश भेजी है। वैसे तो मैंने कभी इनका ज़्यादा देखा नहीं है, क्योंकि ये गाना सुनना इन्हें बहुत पसंद है। बोलते कम है, लिखते कम है, लेकिन सुनते बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी पसंद का हम यहाँ पर ये गाना सुने, अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली कोलीवाड़ा से इनका पूरा नाम है। तो चलिए अशोक जी, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, बहुत ही अच्छा है। उर्वशी आप भी सुनना ध्यान से, है पुराना लेकिन फास्ट है गाना।
1: जी हाँ।

0: जी, समय ठीक है, 1:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं अभी, क्या सुन रहे हैं आपको तो पता ही है। तो उर्वशी जी, आप बताइए क्या सुन रहे हैं।
1: हमें फिल्म रेनबो पे हैं, हिट एंड हॉट चल रहा है और आपकी फरमाइश के गाने हम बजा रहे हैं आपके लिए।
0: जी हाँ, और आपका मनपसंद चैनल है FM रेनबो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इस गाने की फरमाइश की है महेश बोरा, अजमेर राजस्थान से। फिल्म का नाम है, आपको पता है, जिसमें बोल मैं आपको बता दूं,
1: जी
0: आपको
1: हाँ,
0: फिल्म का नाम याद आ जाएगा, गुलाबी आंखें। जल्दी बताइए कौन सी फिल्म है, मैं गाना तो प्ले करने ही वाली हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: अब मुझे अचानक से ऐसे आपने पूछा तो याद ही
0: चलिए
1: नहीं
0: ठीक है,
1: आ रहा है।
0: महेश बोरा जी को तो पता ही है कौन सा गाना है और फिल्म का नाम भी पता है।

जी हाँ, समय ठीक है 1:27 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं इस गाने को। इस गाने की फरमाइश की है फिरोज सिंगनपुरिया जी ने। तो बहुत ही खूबसूरत है गाना जो अभी आप सुनने वाले हैं।

0: जी, समय ठीक 1:40 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 पर। तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गाना। अलका याग्निक की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं है। तो उर्वशी, बताइए किसने फरमाइश की है इस गाने को, परदेसी जाना नहीं?
1: परदेसी परदेसी संदीप मक्कर और ज्योति मक्कर जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है।
0: और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि और हमारे एक श्रोता है जिनका नाम है राजेंद्र जुठानी, कांदीवली वेस्ट। वो लिखते हैं कि भाई मैं भी रेगुलर आपका प्रोग्राम, आप लोगों के प्रोग्राम सुनता हूँ और मैं इस समय कार ड्राइविंग कर रहा हूँ और पुणे की तरफ जा रहा हूँ और आपका प्रोग्राम भी साथ में सुन रहा हूँ। और वैसे ही हमारे साथ और भी श्रोता हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, जिनका नाम है मुकेश कश्यप, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। इनका पूरा परिवार है ना उर्वशी, सुनता है इनके। ये हमेशा लिखते हैं कि हमारे किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल करें, यानी कई लोगों को कितना पसंद है कि उनका नाम सुना जाए। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं इनका नाम बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि हमारा पूरा परिवार है, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ऐसे इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। इसी तरह से एक और श्रोता है जिनका नाम आप ही पढ़ लीजिए भाई, अभिजीत करके है, आप बता दीजिए।
1: जी, अभिजीत
0: गवाणकर है,
1: उनकी सरिता जी है, सिद्धांत है,
0: प्रिंस
1: एकांश है और प्रिंस है, और ये सब हमको सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप।
0: और एक साथ में आपने नाम शायद देखा नहीं, वो मैं बता दूं, बहुत ही प्यारा नाम है, लाड लाड।

टुक टुक गवाण कर करके। तो ये नाम मैं हमेशा देखते भाई, ये नाम है तो मुझे लेना है, बहुत ही प्यारा नाम है टुक टुक करके। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: जी समय ठीक 1:50 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। और जैसे कि बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम भी आपके रेगुलर लिसनर हैं, मुझे पता है भाई आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो बुरा मत मानिए कि अगर हमने आपका नाम नहीं लिया और कहा कि आप रेगुलर लिसनर नहीं हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी श्रोता है जो हमें सुन रहे हैं, सुबलक्ष्मी जी भी हैं और अवधेश मौर्य जौनपुर से हमें सुन रहे हैं और नितिन स्वामी एरोली जिनका नाम अभी उर्वशी जी ने लिया कि थोड़ी देर पहले लिया, वो भी हमें सुन रहे हैं। और मेहर अरोरा श्री गंगानगर राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, इनका पूरा परिवार है ना उर्वशी, हाँ, सुनता है।
1: यस, ये हमेशा एक साथ ही सब सुनते हैं, हाँ,
0: बहुत और बहुत अच्छा लगता है कि भाई सभी लोग हमें सुन रहे हैं और सुनते हैं हमारा प्रोग्राम। और विट्ठल मूंग से अहिल्या नगर से ये हमें सुन रहे हैं। और राकेश माथुर जी तो जैसे कि हमने बता ही दिया, मीना जी भी हैं, प्रमोद कारखानी पुणे से हमें सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने अलग अलग
1: शहरों से
0: हमें सुनते हैं, हाँ। और यानी उर्वशी ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आवाज कहाँ कहाँ पहुंचती है। देखिए मुंबई में तो सुनते ही है हमें, लेकिन मुंबई के बाहर भी
1: बहुत लोग सुनते हैं, जी हाँ।
0: तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। और हाँ एक और है भाई, इनका नाम तो मैं बता दूं, उर्वशी शंकराचार्य करके है, तेलंगाना से।
1: ओ माय गॉड,
0: देखिए हमारी आवाज तेलंगाना भी पहुंच रही है कि वहां पे भी हमें सुन हाँ। रहे हैं। और मैं गिन गिन कर एक एक का नाम आपको बताऊं, और जैसे इनका तो नाम आपने बता ही दिया है, अविनाशी और जी हाँ।
1: बहुत अच्छा लगता है जब देश के अलग अलग शहरों से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बातें करते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में एप्लीकेशन का भी बहुत ही उपयोग ये लोग कर लेते हैं कि अलग अलग शहरों के स्टेशन वहाँ एक्सेस करते हैं और हमें सुनते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग शहरों के लोग हमसे जुड़े।
0: और बता दूं छत्तीसगढ़ से भी हमें सुन रहे हैं, वहाँ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, यानी इनका परिवार यानी वर्मा परिवार जो हमें सुनते हैं।
1: यस,
0: तो मुंबई के लोग तो हैं ही भाई उर्वशी, जो हमें रेगुलर वो तो लिखते हैं भाई, हम तो आपके रेगुलर लिसनर हैं, हमारा नाम जरूर शामिल करिए। और उनमें से एक नाम आता है जो कि ये बहुत ही फिरोज सिंगनपुर।

0: प्रिया जी, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर है, ये भी बहुत ध्यान से बहुत प्यार से हमारे सारे प्रोग्राम सारे आरजेस को सुनते हैं।
1: अरे वाह, हाउ स्वीट।
0: तो इनका नाम भी लेना बनता है। इनका नाम तो मैंने बता दिया क्या है, बताइए आप भी बताइए कि आपको तो लेना ही पड़ेगा, फिरोज सिंगनपुरिया।
1: फिरोज सिंगनपुरिया जी, आपको हमारा नमस्कार।
0: तो ये भी सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक और नाम मैं बता दूँ, प्रकाश शिंदे जी, ये भी बहुत ध्यान से सुनते हैं।
1: प्रकाश भाई भी रोज सुनते हैं हमको।
0: तो चलिए, बहुत बातें हो चुकी और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है हीरो और इस गाने को सुनना चाहते हैं नितिन एरोली से, नवी मुंबई से। तो सुनते हैं इनकी पसंद का गाना और ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ. सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक

0: एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी मुंबई के 107.1 FM रेनबो चैनल पर। लव यू जिंदगी कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी आरजी दोस्त संतोष। तो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी आपसे बातें कर लें। दोस्तों, जिंदगी का सफर जो होता है बड़ा अजीब सा होता है ना। हम सोचते तो कुछ हैं लेकिन हमें मिलता कुछ और है, लेकिन शायद हर मोड़ का अपना कोई मतलब होता है। तो जो शाम का ये सुकून भरा समय है, तो ऐसी प्यारी प्यारी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया गाने सुनेंगे। सूफी कहते हैं, वो तुम्हारे लिए बना है जो, वो तुम्हें ढूंढता हुआ भी तुम्हारे पास आ जाएगा। राहों में भटकना भी जरूरी था शायद, तभी तो अपने होने का पता मिला। हर मोड़ पर कोई सबक मिला था, तब जाकर जिंदगी का फलसफा मिला। और कहते हैं कि कभी कभी जो चीजें हमें देर से मिलती हैं, जिनका हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, वो चीजें बहुत कीमती होती हैं। और उन चीजों का शायद हम बहुत इंतजार करते रहते हैं तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे हम आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, तो बताइए कैसे हैं आप, हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपना हाल चाल बताइए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, लव यू जिंदगी कार्यक्रम चल रहा है। और जिंदगी में जिंदगी से प्यार करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है लोगों को। वैसे जिंदगी

में जिंदगी से प्यार करने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन लोग इतने जो है मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से लगता है कि ज़्यादा प्यार हो गया है, जबकि ज़िंदगी का एक पल भी इतना कीमती है कि उसके आगे सारी चीज़ें फेल हैं। और आजकल सब लोग कुछ पाने की दौड़ में हैं, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूटता गया है। बड़ा घर, बड़ी बातें, बड़ी दुनिया, फिर भी दिल खाली खाली सा। शायद इसीलिए क्योंकि सुकून बाहर नहीं भीतर मिलता है। दिल को थोड़ा खामोश रहने दो, हर सवाल का जवाब जरूरी तो नहीं। कुछ दर्द वक्त के हवाले भी कर दो, हर जख्म की दवा जरूरी तो नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी सिर्फ चुप रहना भी इबादत जैसा लगने लगता है, और लगता है कि बस इस मौन में भी कुछ आकर्षण है, कुछ जिंदगी है, कुछ सुकून है। तो कभी मौन रहकर अपने भीतर देखने की, अपने भीतर की खुशी तलाश करने की कोशिश अगर करेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ मिलेगा।

जब सैटरडे हो और सैटरडे की शाम हो तो मूड बहुत कुछ बनने लगता है, क्योंकि वीकेंड शुरू है और ऐसे में मूड करता है कि हम

बस अपना सुकून ढूंढें। हर किसी का अपना सुकून अलग अलग होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। किसी को किसी चीज़ में सुकून मिलता है तो किसी को किसी बात में सुकून मिलता है, किसी को पार्टी करके सुकून मिलता है तो किसी को एफएम रेनबो सुनकर भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो, लव यू जिंदगी। जिंदगी में मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है। जब जिंदगी में मोहब्बत नहीं होती है तो थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा कहते हैं कि कहीं मन नहीं लगता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही किसी को मोहब्बत होती है तो सारा वातावरण, सारा माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है। जैसे कहा गया है ना कि तितलियां उड़ने लगती हैं, सब गुलाबी गुलाबी हो जाता है, सब पिंक पिंक हो जाता है। और लड़कों को लगता है कि आसमान से परी उतर रही है, तो वहीं लड़कियों को लगता है कि सफ़ेद घोड़े पर कोई राजकुमार आ रहा है। खैर, ये बातें होती थी। अब आजकल लोग कैसे अपनी मोहब्बत को इमेजिन करते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मोहब्बत की बात तो अनमोल है। मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं होती है, है ना। कभी किसी की खुशी में खुश हो जाना, किसी की खामोशी समझ लेना भी इश्क होता है। सूफियाना मोहब्बत शायद वही है जहाँ शिकायतें कम हों और दुआएं ज़्यादा होती हैं। इश्क वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयां हो जाए, इश्क वो है जो खामोशी में भी महसूस हो जाए, जिसमें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र हो, शायद वही मोहब्बत रूह तक पहुंच जाए। तो ऐसी मोहब्बत भरी बातों के साथ और ये धुआंधार कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए आज हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त संतोष।

चैनल लव यू जिंदगी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और जिंदगी से अगर प्यार करते हैं तो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं महसूस करना सीखिए, थोड़ा प्रेम बांटिए, थोड़ा माफ करना सीखिए और थोड़ा खुद के साथ भी बैठिए, क्योंकि आखिर में रूह को सुकून रिश्तों की दौलत या शोहरत से नहीं मोहब्बत और सच्चाई से मिलती है। और जहां तक सूफियाना मोहब्बत की बात अगर की जाए तो जहां शिकायतें कम और दुआएं ज्यादा होती हैं और खामोशी महसूस की जाती है वही मोहब्बत असली मोहब्बत होती है। वक्त बहुत खामोशी से इंसान को बदल देता है। कल जिन बातों पर गुस्सा आता था आज उन्हीं बातों पर मुस्कुरा देते हैं। शायद उम्र नहीं तजुर्बे इंसान को समझदार बना देते हैं। वक्त ने हर शख्स को आईना दिखाया है, किसी को अपना किसी को पराया बताया है। जो खामोशी को समझ गया जनाब उसने जिंदगी का असली मतलब पाया है। और सच तो ये है कि हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लिए घूम रहा है और शायद इसीलिए इंसान अंदर से बेचैन होता है और बाहर उसके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक सोनापन दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, संगीत का साथ पाते हैं और संगीत तो हर गम को भुला देता है। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और पहला नाम है प्रकाश शिंदे जी का, लिखते हैं जिंदगी जीने के दो ही अंदाज होते हैं, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो या जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। और एक पल को ऐसे जियो, हर एक पल को ऐसे जियो कि जैसे लगे कि वो आखिरी हो। कल की फिक्र में आज की खुशी को मत गवाओ, हर लम्हे को खुशी खुशी मुस्कुरा कर बिताओ और हो क्या पता जिंदगी कल हो ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने और आपने, आपको गाने पसंद आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र परमार जी भी लव यू जिंदगी में हमारा सहर्ष स्वागत करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सभी का वेलकम करती हूँ, सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और विजेंद्र घाटोल अकोला से हैं और इन्होंने कहा है कि हम बहुत बढ़िया हैं संतोष जी, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहिए और गर्मी से अपना बचाव करते रहिए। हम भी ठीक हैं विजेंद्र जी, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, तभी तो हम यहाँ तक आ गए हैं और आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अरविंद कुलकर्णी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। शायद आज के ज़माने में अच्छे होना खराबी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छों के साथ अच्छा होता है। और ऐसी बात मन में कभी मत लाइए कि अच्छे हैं शायद ये खराबी है, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धनंजय ने न्यू मुंबई से हमें, हमारे लिए चाय का प्याला भेज दिया है। प्रणव शिंदे ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं लेकिन इनकी बातें अब हम आपको सुनाएंगे बस इस गाने के उस पार।

0: रंगों में डूबी हुई रंगीन बातें,
1: मस्ती में उछलती खूबसूरत आवाजें,
2: म्यूजिक इंटरव्यूज और बेहतरीन तराने,
3: एंटरटेनमेंट का हब सुने हम सब।
4: मुंबई का नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का FM रेनबो आपका हम सफर, आपका हमराही, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं, लव यू जिंदगी कार्यक्रम चल रहा है और हमने पूछा आप सब कैसे हैं, क्या हालचाल है। तो कुछ लोगों ने अपना हाल चाल बताया और कुछ लोगों ने बस चाय की चुस्की की बात कर दी। प्रणव शिंदे जी लिखते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को जो गले लगाते हैं वही लोग असल में ज़िंदगी मुस्कुरा कर बिताते हैं। रोज़ सुबह की वो पहली चाय की प्याली और अपनों के साथ हंसी मजाक वाली खुशहाली, छोटी छोटी बातों में ही तो सुकून है, वरना बड़ी दौड़ में तो हर कोई खाली है। आगे भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और खुशियाँ बस चंद लम्हों के लिए आती हैं, ये तो इन्होंने लिखा है कि बड़ी खुशियां जो होती हैं चंद लम्हों के लिए आती हैं। तो खुशियां और दुख ये तो बस आते जाते रहते हैं, धूप छांव की तरह। खुशी है तो गम भी कभी ना कभी आता है, और गम है तो वो जाता भी है, खुशी भी आती है। और संजय दर्शन जी लिखते हैं कि जिंदगी खुश मिजाज से चल रही है और उस मिजाज में इंद्रधनुषी रंग है यानी रेनबो है, और रेनबो पे आज संतोष है, तो गुड इवनिंग जी। तो आपको भी संजय जी गुड इवनिंग। पंकज मोहोड लिखते हैं कि मैडम जी मैं तो बहुत अच्छा हूं और मौसी के यहाँ कार्यक्रम में गया था और अब गांव वापस आ रहा हूं। मौसी के यहाँ जाना तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है, नानी मामा और मौसी इनके पास जाना तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आप मौसी के यहाँ गए हुए थे। और सुनते रहिए एफएम रेनबो, बस हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा आपका मूड बनाए। आज शनिवार की शाम है और सब लोग अपने आशियाने की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ लोग पार्टी का मूड भी बना रहे हैं, है ना।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
6: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
7: FM रेनबो आप सुन रहे हैं, लव यू जिंदगी कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप अनंत कृष्णन जी ने ईश्वर का धन्यवाद किया है और गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं, लवली सॉन्ग लिखा है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अविनाश दामोदर कड़ू वाढ़वन टीघरे पाड़ा से इन्होंने शुभ संध्या कहा है, तो आपको भी शुभ संध्या। आप सभी ऐसे ही साथ जुड़े रहिए और गाने इंजॉय करते रहिए और आपकी फरमाइश वाला प्रोग्राम आएगा जहां आप अपनी पसंद के गाने सुन पाएंगे। और जो गाने आपको अच्छे लगते हैं, सोच लीजिए 3-4 गानों की लिस्ट भेजिएगा और जो है पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबके सभी गाने हम सुनवाएं और आपकी फरमाइश पूरी करें। सबके सभी गाने नहीं, आप सबके गाने सुनवाएं हम। कहते हैं कि चलते रहिए मगर दिल को कहीं रुकने तो दीजिए, लेकिन थकने ना दीजिए। अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए। ये दुनिया सिर्फ चेहरों का मेला है साहब, दिल के अंदर कौन देखता है, दिल तो सबका अकेला है साहब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये इतना खुशनुमा है, इसे अंदर से महसूस कीजिए। और जब प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे और दया ममता करुणा ये भावना, सहयोग की भावना, भावनात्मक जब अभिव्यक्ति आपके अंदर से निकलेगी तो सारा माहौल खुशनुमा हो जाएगा। आखिर कितने दिन रहना है, सबको जाना है ना।

इतनी कंजूसी कर ले और चाहे जितने छल कपट करके धन बटोर ले, लोगों का हक मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर और सच्चा व्यवहार करिए, सच्चाई के साथ रहिए। ठीक 6:05 से आप सुनेंगे समाचार मराठी भाषा में और उसके बाद 6:15 पर हम आपके साथ होंगे अंदाज़े बयां कार्यक्रम लेकर। फिलहाल एक और गाना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अंदाज़े बयां में। आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो पर आप हैं संतोष के साथ, और इस कार्यक्रम में बस फिर से एक बार हम बढ़ेंगे सुकून की तरफ, और कुछ ऐसे जो है गज़लें, ऐसी गज़लें आपके लिए लेकर आए हैं कि बस इस संगीत में आप खो जाएंगे। शाम के इस नरम, खामोश और हल्की हल्की भीगी हुई फिजा में आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल, जहां बात होती है दिल की एहसासों की और उन जज्बातों की जो अक्सर शब्दों से ज़्यादा खामोशियों में सुनाई देते हैं। तो आइए कुछ गज़ल नुमा बातें, कुछ रूहानी एहसास और कुछ दिल के करीब शेर लेकर आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करते हैं।

शाम का अपना एक अलग मिजाज होता है, दिन की भागदौड़ थमने लगती है और दिल धीरे धीरे अपनी आवाज़ सुनने लगता है। कुछ लोगों को शाम में सुकून मिलता है और कुछ लोगों को किसी की याद मिलती है। शाम उतरी तो

तेरी याद का मौसम आया, फिर वही दर्द मेरी रूह को छूकर गुजरा। कुछ चिरागों ने अंधेरों से दोस्ती तो कर ली, कुछ ने तो खामोशी में खुद को जला कर देखा। पर सच कहूँ तो कुछ रिश्ते शाम की तरह होते हैं, पूरा दिन याद नहीं आते, मगर शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही दिल में उतर जाते हैं। और ये जो मोहब्बत है ना, ये सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी किसी के इंतज़ार में मुस्कुराना भी इश्क होता है, कभी किसी की खुशी के लिए खुद को चुप कर लेना भी इश्क होता है। इश्क अगर लफ्ज़ों का मोहताज होता तो खामोश आंखें कभी रोती नहीं, जो रूह तक उतर जाए एहसास बनकर वो मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। और सच्चा प्रेम अक्सर शोर नहीं करता, बस धीरे से चुपके से दिल में कहीं घर बना लेता है।

0: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: तो FM रेनबो पर गजलें आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां कार्यक्रम में, और इसके साथ शेर व शायरी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे कोई श्रोता अगर खूब बढ़िया उम्दा सी शायरी उनके दिल में मचल रही है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। और विजेंद्र घाटोल जी अकोला से हैं, इन्हें गजलें अच्छी लग रही हैं। और बाबा हैं दादर से, महफिले बाबा बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ प्रकाश शिंदे जी वापस जुड़ गए हैं, और इन्हें जो है अंदाजे बयां इन्हें हटके लग रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और संतोषी आए हैं तो अंदाजे बयां में मखमली गज़लें महकेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गज़लें कार्यक्रम में का आगाज़ बहुत अच्छा है। ये हमें लिखा है राजेंद्र परमार जी ने। राजेंद्र परमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गज़लें अच्छी लग रही हैं। अजय साखरे जी इंदौर से लिख रहे हैं नाइस गज़ल्स। तो चलिए हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों का मूड बदलता रहे और आप लोगों की पसंद जो है जुड़ती रहे हमारे साथ। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल। और चलिए ये एक प्यारी सी गज़ल मेहदी हसन साहब की आवाज़ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रंगों में डूबी हुई रंगीन बातें,
2: मस्ती में उछलती खूबसूरत आवाजें,
3: म्यूजिक इंटरव्यूज और बेहतरीन तराने,
4: एंटरटेनमेंट का हब सुने हम सब।
5: मुंबई का नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का FM रेनबो आपका हम सफर, आपका हमराही, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

घर बहुत हसीन वाकई होता है और घर से लोगों को इतना प्रेम होता है और बहुत से लोग एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और बहुत से लोगों के पास बहुत सारे घर होते हैं। तो घर भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और घर सबके लिए बहुत ज़रूरी है और बस यही दुआ है हमारी कि सबके पास खुद का अपना घर हो। तो चलिए बातें होती रहेंगी और कहते हैं कि वक्त जो होता है, समय जो होता है, ये वक्त बहुत अजीब चीज़ है। कभी वही लोग बेहद अपने लगने लगते हैं और फिर एक दिन वही लोग अजनबी हो जाते हैं। लेकिन शायद यही ज़िंदगी का सच भी है, कोई हमेशा साथ नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। वक्त ने चेहरों पे धूल ऐसी बिछा दी, पहचान भी अब पहचान नहीं लगती। जो कल तक दिल के सबसे करीब थे, आज उनसे बात करने की जुस्तजू नहीं होती। मगर दोस्तों, कुछ लोग चले जाने के बाद भी दिल से कभी नहीं जाते हैं और कुछ लोग दिल को ऐसे रुसवा करके जाते हैं कि बस उनकी याद आती है तो मन खट्टा सा हो जाता है। तो कभी किसी को रुसवा मत कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री धरन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री धरन बाल चंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी जो है हमारा रेडियो सुन रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, गज़लें सुन रहे हैं। फिरोज़ सिगनपुरिया जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं और गज़ल सुनकर इनका दिल बहुत खुश हुआ और जो है इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब लता जी को सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गज़ल।

0: रंगों में डूबी हुई रंगीन बातें,
1: मस्ती में उछलती खूबसूरत आवाजें,
2: म्यूजिक इंटरव्यूज और बेहतरीन तराने,
3: एंटरटेनमेंट का हब सुने हम सब।
4: मुंबई का नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का FM रेनबो आपका हम सफर, आपका हमराही, म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में
3: सुनिए। क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 पर आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां कार्यक्रम, और ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और 7:10 पर हम तुम कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो बस आप लोग अपनी फरमाइश की लिस्ट बना लीजिए और 3-4 फरमाइश लिखकर भेज दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करें। कहते हैं कि वक्त जो है इंसान को कभी अच्छा बना देता है, कभी उसी इंसान को बुरा भी बना देता है, लेकिन वक्त बनाता है ये तो नहीं कह सकते, है ना। इंसान अगर अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। ज़िंदगी शायद उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो टूट कर भी मुस्कुराना जानते हैं। हर अधूरा ख्वाब इंसान को थोड़ा और गहरा बना देता है। कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी अच्छे लगते हैं, कुछ दर्द उम्र भर दिल में रहते हैं। हर कहानी मुकम्मल हो ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ किस्से अधूरे होकर भी जिंदा रहते हैं, और कभी कभी जो नहीं मिला वही सबसे ज़्यादा याद रहता है। वैसे तो आजकल हर इंसान भाग रहा है, लेकिन पता नहीं किसकी तलाश में, दौलत शोहरत रिश्ते सब कुछ होने के बावजूद भी दिल किसका बेचैन हो। शायद इसलिए क्योंकि सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता है। तो आज की इस महफिल से आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि ये शाम, ये बातें और ये गज़ल नुमा एहसास आपके दिल के किसी कोने को छू पाए होंगे। जाते जाते बस इतना कहूँगी कि ज़िंदगी को महसूस कीजिए, मोहब्बत बांटिए। कुछ लम्हे दिल में उतर जाते हैं, कुछ लोग यादों में बिखर जाते हैं। मिलते हैं बहुत लोग इस दुनिया में, मगर कुछ ही रूह में घर कर जाते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, एक नए जज्बात, एक नई गुफ्तगू के साथ। लेकिन फिलहाल हम तुम कार्यक्रम 7:10 पर इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तो अपनी फरमाइश हमें बता दीजिए और चलते चलते लता जी की मीठी सी आवाज़।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, तो एफएम 107.1 एफएम रेनबो पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम तुम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कि आप लोगों ने, और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ गई है, और आज बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं क्योंकि इतनी फरमाइश तो किसी भी हाल में पूरी नहीं की जा सकती है जितनी लिस्ट बन चुकी है। तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गाने आपको सुनवाए जाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं बिना देरी किए हुए।

गीत था और इस गाने को सुनना चाहा था विजेंद्र घाटोल ने अकोला से। अगला गाना है फिरोज सिगनपुरिया की पसंद पर। फिरोज सिगनपुरिया जी, आपकी पसंद है बहारों फूल बरसाओ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, सूरज फिल्म का गाना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी और इसकी फरमाइश की थी ठाणे मुंबई से चंद्रकांत दुबे जी ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हितेंद्र दास आसाम से, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता की पसंद पर, और उमरी अकोला से प्रमोद चिंचोलकर की पसंद पर मेरा नाम जोकर। इस फिल्म से ये गाना मुकेश की

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अगला गाना है आखिरी रास्ता फिल्म से, और कार्यक्रम का अगला गाना है धर्म कांटा फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, नौशाद का संगीत निर्देशन है, और इस गाने की फरमाइश की है राम प्रजापति ने।

बहुत सारे नाम कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो बहुत सारे नाम आए हैं, तो बहुत सारे गाने की फरमाइश भी आ गई है, तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे श्रोता नाराज हो जाएंगे। और अब हम उन श्रोताओं का नाम ले रहे हैं जिनके गाने हम आगे सुनवा रहे हैं। तो अगला नाम है राकेश माथुर का, अखियों के झरोखों से फिल्म का गाना आएगा। उसके बाद आएगा नवी मुंबई से धनंजय की पसंद पर गाना आएगा। तो ये है आखिरी रास्ता फिल्म का गाना। लेकिन ये गाने सुनाने से पहले आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे श्रोता मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका, विठल मुंगसे और हमारे सुशील यादव, रेणु यादव, पंकज मोहोड, संजय दर्शन, प्रदीप अनंत कृष्णन, अरविंद कुलकर्णी, अविनाश दामोदर कड़ू, वाढ़वन दीघरेपाड़ा से और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं चेतन कुमार गया बिहार से, सुनीता व्यवहारे हैं वर्ली से और इनकी बेटी मनाली का बर्थडे है तो उसके लिए ये गाना सुनना चाहती हैं। और देखते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बाद में अभी आपने बताया और सारी लिस्ट बिल्कुल एंट्री हो चुकी है तो बिल्कुल गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो आप जिन श्रोताओं की फरमाइश आने वाली है उनके लिए तो खुशी है, और जिनकी फरमाइश नहीं पूरी हो पाएगी वो उनकी थोड़ी नाराज़गी होगी, लेकिन आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। समय का बंधन बहुत बड़ा बंधन होता है। तो इस ब्रेक के बाद गाने आ रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हमारे बहुत सारे श्रोता आज अपनी फरमाइश नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आज इतनी ज़्यादा लिस्ट आ गई कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, समय का बंधन रखना ही पड़ता है। तो हमारे श्रोता श्रीधरन जी ने लिखा है कि व्हाट अबाउट माय नेम, तो इन्होंने भी बहुत सारे नाम लिखकर भेजे हैं और इनके इनका गाना भी बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और इनके साथ हैं वनीता, बिंध्या, प्रियंका और ग्रैंड डॉटर विधि है और पूरी फैमिली है, सबरीना, जूली, जरीन, वनीता, प्रकाश। और श्रीधरन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम ही शामिल हो पाया है। पंकज मोहोड़ जी हैं, धनंजय जी नवी मुंबई से हैं और महेश शेट्टी जी हैं, मुकेश कश्यप जी हैं, राकेश माथुर जी हैं और प्रदीप अनंत कृष्णन जी हैं, चंद्रकांत तुपे जी हैं, मेहर अरोड़ा, महेश बोहरा जी हैं राजस्थान से और अजमेर राजस्थान से हैं। और एक जो है नंबर है यहाँ पे, नाम है राजेंद्र जी, न्यू पनवेल से जीत फिल्म का गाना सुनना चाहते थे, आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हितेंद्र दास हैं, हीरामणि वर्मा हैं, हरजिंदर छिंदा जी, जसबीर पंजाब से हैं, नथाना गांव से, अरविंद कुलकर्णी, प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, कविता और दिग्दर्शन चेतन माथुर, सुशील यादव, रेणु यादव, प्रणव शिंदे, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश, विठल मुंग से, राम प्रजापति, स्नेहा वर्ली से और बाबा दादर से हैं, राजेंद्र परमार, विनती ठाकुर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में साथ देने के लिए। और जो दो गाने हमने आपको बताए थे वो तो हम सुनवाएंगे ही, लेकिन सुनीता व्यवहारे की तरफ से उनकी बेटी मनाली के लिए हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, उसके बाद दो गाने।

0: Beach Boys over there, California Girls. If you're missing someone out there, if you remember a summer romance or summer love, you can message me in on Saturday 8. It's from 10 o'clock, the show where every dedication carries a heartbeat. Share your feelings, send your dedications, let your message say what words cannot. You can do that right here on Akashwani's FM Rainbow Channel. Stay tuned now for the news coming up in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And we'll be back with more fabulous music to get you through this hot summer night right here on 107.1 megahertz.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री

0: रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को

0: नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा।

0: साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक

पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मैं मोहब्बत की बादशाहत हूँ, मुझ पे चलता नहीं है राज मेरा।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है, कहना भी है और छुपाना भी, जताना भी है और बताना भी नहीं, ये मोहब्बत है, इसका रंग सबसे जुदा है।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

किशोरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

जी हाँ, आप एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता।

अगर आप एक बार किसी से मोहब्बत कर लें तो उसे कभी नफरत नहीं कर सकते। सच ये भी है कि खुशियों को नजर लगती है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मोहब्बत का सफर भी कई मोड़ों से गुजरता है, कई रंग उड़ता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां।
4: जी हाँ, आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं ना बताऊँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।
3: चूड़ियां,
5: ए चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ।
6: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठहरेंगी।
5: ये क्या कर रहे हैं?
6: चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी।
5: हमको और चूड़ियां

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है,

0: उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:05 और 50 सेकंड समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:27 और 16 सेकंड कार्यक्रम जीरो आर शो

0: रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 12:51 और 50 सेकंड समय है कार्यक्रम जीरो आर शो का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनएक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति

0: होगी।
1: रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो हुंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज

चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्यूवान काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

छुपाने से क्या फायदा? चेहरा तो हमने आपका देख ही लिया, बहुत खूबसूरत हैं आप। वंदना, एक चुटकी सिंदूर से तुम्हारा सारा जीवन हमारा हो गया। ये धर्म की रीत भी अजीब है, है ना? लोग कहते हैं ब्याह एक चाह है, निभा है, पता नहीं क्या है।

भाई हम तो ये गुनाह कर बैठे, हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी, हमारी समझ में भी नहीं आ रही। बगैर सोचे समझे जीने में बड़ा मजा है। तुम्हारा दिल धक से रह गया होगा कि तुम्हारा पति शराबी निकल गया। नहीं, हम कभी कभी थोड़ी शराब पीते हैं, सिर्फ 3 पैग, उससे ज्यादा कभी नहीं।

0: सर से पांव तक के नीला रंग, जैसे हाँ जैसे गगन।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आल लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: तुम्हारे जैसा बगीचे में गाना गाएंगे।
1: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
0: बेबी कम ऑन, शंकर बिहारी के साथ।
2: ओ बुढ़ा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया।

या चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियू सेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरा

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

देवा कीर्ति तुझे भारी, डंका तुझा एक निकालो तुझे।